0: हमी कहा सैमसंग ओप्पो भिवो सीजी इंटेक्स एमआई मैजू कलर्स लाभा एमटेक टेक्नो आईटेल ब्रांड का मोबाइल घड़ी साउंड सिस्टम डिफोम पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लीएर नया मोबाइल साटि
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंग श्री मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगे प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9813180307।

0: me a
1: extreme energy drink.
2: Honey, my little body. Oh, this time I'm going to go for something different. मुझे आज तो राम रिचा होगी देखने से नहीं सुना ना उस तक आता ये पोस्टर को तो रेडियो भागन का तो दिखा पन बजी रहने से किस वाले बदले नहीं ले गए और रेडियो भागन में दिखा मन दिया आई रहने से
0: हजुर तपाईं पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले रेडियो भागनमा विज्ञापन दिइहाल्नुस् यसले तपाईंको व्यापार मात्र होइन तपाईंको परिचय पनि दिनेछ
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: me yet?
1: Extreme energy drink.
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: देखिना जी नीति योजनामा किसकियो मसी सब लेते लालातमा
1: सुनो सभी अन्न बनाने भारत के लिए हमारा

0: Bonnie. Extreme energy drink.
1: 哎，安子，阿我开窗的、纱窗的关的呢，你在这干的呢？啊，地瓜拉的 computer 进的，背后的进去。
2: 哦，你买了 computer 在干进去的？
1: 你在黑的玩呢？
2: 哪里？阿出的妈妈？
1: 姐姐黑的玩呢
2: ？Fortis Computer Center， 这哈 computer、laptop、printer、UPS 罗个哎 ，computer 上面的全部啥么子进去？我要办那事，把那企业进去。妈妈，
1: 玩子，这黑的你在这干的？地瓜拉进去 computer 也带进了，阿我开。दादी ये सी बीमार यार को प्रत्येक कंप्यूटर सेंटर में जस्ट सुविधा रह सकता अंत कहीं पाई नहीं ना
3: जस्ट खुजे तेज़ ही कंप्यूटर पाईने बिगनियों भरे पनी बनाई दीनी तेज़ ही अंत है ना कंप्यूटर चाहिए दादी ये सी बीच बाजार को प्रत्येक कंप्यूटर सेंटर में जाने
4: सभी प्रकार का कंप्यूटर को लागी प्रत्येक कंप्यूटर भरे पर चीज सादे झुका फोन नंबर 0910-5902-97-97-5-10-97-778
5: समुदाय कलागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज

रेडियोधारी 100.5 मेगाहर्ज का साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.redhari.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको साँझ 7:45 बजे को खबर में वेकको नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य मुख्य खबर। आगलागी पीड़ित परिवार मदन ढुंडारी फाउंडेशन द्वारा सहयोग हस्तांतरण। धादिंग का 3 विद्यालय में विद्यालय तह नैतिक शिक्षा प्रवर्धन